लो जी, गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम कुछ ही देरी तो बाद वापस आ गया। लो जी, समा हो गया 7:03। तुसी सारिया ने ट्यूनिंग किया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वे। मैं तुहाड़ी आज दोस्त राहिल दी, प्रोग्राम शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग जलंधर। ते फिर जलंधर वाली होगी कि नहीं गुड मॉर्निंग।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

जी आए नू जी आए नू जी आए नू प्रोग्राम शुरू हो गया दिल अपना पंजाबी यानी कि दिल तो दिल तक दियाँ गल्लां होने वाली ने ते तुसी सारे ने ट्यून किया 102.7 मेगाहर्ट्ज़ नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ भी ते तुसी बड़े होए हो आकाशवाणी दे नाल ते नाल अपनी आरजे दोस्त राहिल दे नाल

केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान दे अफसोस प्रकट करदिया मुआफी मंगी है। पंजाब दे माल मुड़ वसेबा अते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्या कि सरकार ने हड़ रोक कारजां अते सूबे भर विच किसी भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटन लई अगाऊ 146 करोड़ रुपए जारी किते ने। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सेयां विच गरज चमक नाल तेज हवावां चलन संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है। क्रिकेट विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल 2026 दा खिताब जीत लिया है। भारत दे मोगली वेंकटराम ने हांगकांग विच एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच मर्दां दे 800 मीटर दौड़ विच सोने दा तमगा जित्या है। एसन हुन तक दियां एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

हाँ जी, लाइव फोन इन प्रोग्राम पंजाबी तड़का दी शुरुआत हो चुकी है। ट्यून इन किया होया जी तुसी 102.7 FM रेनबो ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी। ते हुण ओह प्रोग्राम जिहदे विच तुहाडे पसंद दे फरमाइशी गीत जिहड़े ने खास इस प्रोग्राम दे विच शामिल होणगे। सो तुहाडे गीत ते तुसी प्रोग्राम दे विच किद्दां शामिल होना है उहदे लई साडा नंबर है 0181-23-42-174, यानी कि 01-81-23-42-174 है साडा नंबर रहेगा। फटाफट नंबर मिलाओ ते प्रोग्राम दे विच शामिल हो जाओ, साडे नाल गल्लां करो ते अपनी पसंद दे फरमाइशी पंजाबी जिहड़े गीत ने ओह तुसी इंजॉय करो। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जी हंसराज हंस की आवाज़ जी दे नाल, आवाज़ दे नाल इस प्यारे जे म्यूजिकल ट्रैक दे नाल।

वंस अगेन वेलकम बैक है जी ट्यून इन के तहत उसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़ ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल ते बहुत सारे गीत जिहड़े हुंदे ने ना मतलब जदों वो तुसीं उन्हां नूं सुनदे आ ते ओ जिहड़ा समा हुंदा है ओ जिहड़ा वक्त हुंदा है असीं दोबारा सारा रिकॉल करते हाँ ते अगला गीत भी कुछ इदां दा ही है जो साडे सारयां दे दिल दे बहुत ही करीब है गाना हैगा मन की आंखें जो कि रिलीज़ हुई सी 1970 दे विच आ रही है जी थोड़े रेडियो सेट पे

जी ट्यून इन किया है तो सी 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज ते मैं हाँ जी तुहाडी अपनी साक्षी तुहाडे नाल सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ की गल करिए ना तो इन्हां दी आवाज़ काफ़ी हद तक लता मंगेशकर जी दे नाल भी मिलती सी इसी वजह नाल मतलब बहुत सारे लोग जिहड़े सिगे ने लता जी दे गाने तो इन्हां दे गाणियां दे विच हमेशा कन्फ्यूज़ रहिंदे सी कि इह गाणा किन्ने गाया फिर भी सुमन जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई तो हिंदी दे नाल नाल चाहे मराठी होए चाहे बंगाली होए या गुजराती होए तो ईवन पंजाबी दे विच भी उन्होंने कई सारी भाषावां दे विच जिहड़ी है अपने गाणियां दे राहीं अपनी आवाज़ जिहड़ी है वह दित्ती सो अगला गीत भी आ रहा जी तुहाडे रेडियो सैट ते इदां ही बने रहो 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़

वंस अगेन वेलकम बैक है जी। ट्यून इन किया है तुसी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज। स्टूडियो दे घड़ी दे विच इस टाइम होया जी 1:22 ते 2 सेकेंड। अगला गीत आ रहा यूं ही दिल ने चाहा था। मूवी का नाम है दिल ही तो है।

दोस्तों तो सुन रहे हो एफएम बैंड 102 इशारा 7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा है रेनबो चैनल है। वेल तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते बहुत सारे सरोते ने सानू मैसेजेस भेजे ने।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया है, आहट आहट को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया।

दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिला शायर है ते मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। साढ़े स्रोत्या ने बहुत सोना मैसेज भेजा है लिख रहे ने कि तजुर्बों ने यही सिखाया है पेड़ अपना है फल पराया है। तजुर्बों ने यही सिखाया है कि पेड़ अपना है फल पराया है। उसने बस ठोकरें हटाई हैं पत्थरों को कहाँ हटाया है। आज वो फायदे में है जिसने वक्त से फायदा उठाया है। कोई आंसू ही उसे हंसाएगा कोई आंसू ही उसे हंसाएगा कह कहो ने जिसे रुलाया है। खाकसार उदय चंद्र साढ़े सरोतिया ने लिख के भेजे। उस तो बाद एक इन्होंने फोटो भेजी है जो कि 18 मई 1995 की लिखत है। एक उत्ते लिखे है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साए रहने दो उजाले अपनी यादों के हमारे साए रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये जो लिखा है ये है बशीर बंद्र योना जी की लिखत है। साढ़े स्रोतिया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इन्नी वैल तो उन्होंने एक पुरानी जी इन्नी फोटो जी सामभी हुई सी। आई होप कि वो बहुत बहुत कुछ लिखते हो गए बहुत सारिया उन्होंने पोइट्रियाँ सोर भी हो गई। दोस्तों साढ़े प्यारे सरोतिया एक दरख्वास्त है कि जेकर तुसी कोई फोटो भी भेज दौ दैन उ राइटर का जोड़ा नेम आ जरूर मैनशन करो क्योंकि सिर्फ पढ़न नाल तो चलो ठीक है बहुत अच्छा लिखा होंगे पर अगर वह राइटर भी मैनशन हो जाए ना तो होर वधिया होंगे है। जिमें कि एक होर एक ना पोइट की याद आ रही है एक शायर की याद आ रही है जिन्हों का नाम से वारिस शाह। उन्होंने लिखा सी कि इश्क न पुछे जात कुजाती इश्क न जात कुजाती होए जोड़े इन्हों रब ने जोड़े तोड़े तोड़े ना तोड़े कोई। क्या वारिस शाह जिहड़े हीर रांझा दे लेखक ने वो कहिंदे ने कि सच्चा प्यार ना जात पात नहीं देखता जिहड़े जिहड़े दिल रब ने जोड़ दिते ना उन्होंने दुनिया की कोई ताकत वख नहीं कर सकती। दोस्तों उन्हां दी शायरी ना सानू सिखाउंदी है कि मुहब्बत ना सब तो उपर है। हीर रांझे की कहानी अज भी लोगों के दिलों च ना जिंदा है क्योंकि उसके सच्चे इश्क का दर्द छुपया होया है। दोस्तों क्योंकि उहदे विच सच्चे इश्क का दर्द भी लिखा होया है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा दिला शायर है ते साडे स्रोते ने एक

वक्त ही हर मर्ज दी दवा होंदी है, वक्त ही हर मर्ज दी दवा होंदी है। क्या बात है दोस्तों, बहुत सुना लिखा बसंत सिंह टेलर जी। दोस्तों जिवें कि साडा प्रोग्राम है दिल आज शायर है, आपां पोएट्री गज़ल दी गल कर रहे हैं, पर उहदे बारे असीं जाणदे हां कि गज़ल असल च होंदी की है। दोस्तों उहदा कहिंदे कि गज़ल ना उर्दू अते फारसी साहित्य दी एक बहुत ही मशहूर अते रूहानी काव्य विधा है। गज़ल शब्द दा जिहड़ा मतलब हुंदा है ना, औरतां नाल गल करना जां प्यार दीआं गल्लां करना हुंदा है, पर समें दे नाल ना इसका दायरा बहुत वड्डा हो गया है। दोस्तों अज गज़ल प्यार, दर्द, विरह, इश्क, रब, समाज अते जिंदगी दे हर पहलू बारे बोलती है। गज़ल दी जिहड़ी बणतर है ना, आपां शेर, मतला, मकता, काफिया दे रदीफ। शेर जिवें कि गज़ल कई दो लाइना टुकड़ियां नाल बणदी है जिन्हां नूं शेर कहिंदे आपां। हर शेर अपने आप च ना पूरा अर्थ रखदा है। जिहड़ी मतला हुंदी है गज़ल दा पहला शेर मतला हुंदा है, जिस दीआं दोवें लाइनां विच काफिया अते रदीफ आउंदी है। मकता हुंदा है गज़ल दा आखरी शेर जिहनूं आपां मकता कहिंदे आ, जिस विच कवि अपना नाम तकलूस वरतदा है। जिवें कि जस्सल आपां हुण पढ़ी ना पोइटरी कि जस्सल वक्त नाल भर जांदा है, ते जिद्दां इहनां दा नाम मैनशन सी। उस तों बाद आउंदा है काफिया दे रदीफ। हर शेर की दूजी लाइन के जिहड़े अखीर ते ना एक इक्को जिहे शब्द आउंदे ने जिन्हां नूं रदीफ कहिंदे आ। रदीफ तो पहला ना आने वाले मिलते जुलते शब्द काफिया होंदे ने। दोस्तों गज़ल की जिहड़ी खूबी होंदी ना, गज़ल की सब तो वड्डी जिहड़ी खूबी होंदी है वह यह है कि इस दे हर शेर का ना अपना वक्रा ही मतलब हुंदा है। तुसी किसी भी शेर नूं वक्फ करके पढ़ो वह पूरा लगेगा। इस करके गज़ल सुनने वाले दे जिहड़े दिल नूं छू जांदी है। इस विच जिहड़े शब्द ना वह घट हुंदे ने पर जिहड़ा अर्थ ना बहुत डूंघे हुंदे ने। उतवार अगर आपां मशहूर गज़लकार की गल करिए कि मिर्ज़ा गालिब, मुहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, जॉन एलिया, तो होर भी सारे बहुत सारे होंगे। पंजाबी विच आपां कह सकते शिव कुमार बटालवी जी, सुरजीत पात्र, पाश ने बहुत ही खूबसूरत गज़लां लिखियां ने। दोस्तों आखिर गज़ल क्यों पसंद की जाती है? दोस्तों असल च आपां जे गल करिए कि जिहड़ी गज़ल है ना वह दिल की भाषा बोलती है। दोस्तों जदों बंदा टुटिया हुंदा है ना, इश्क विच हुंदा है, जां रब नूं लभदा हुंदा है ना, तां गज़ल दा एक शेर ही उसका हाल ना बयान कर दिंदा है। जगजीत सिंह जी, गुलाम अली वर्गे गायकां ने जिहड़ी गज़ल नूं घर घर पहुँचाया है। संखेप विच गल करिए तां गज़ल कविता दा ओह रूप है जो घट शब्दां विच जिंदगी दा सार कह जांदी है ते कह दिंदी है, ये दर्द नूं भी खूबसूरत बना देंदी है। दोस्तों क्या बात है दोस्तों, ये सी अज दोस्तों आपां गज़ल दी गल कीती, क्योंकि जिहड़ा प्रोग्राम है ना साडा दिल आज शायर है, इसनों आपां जो ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगे ना, जिहड़े स्रोते सानूं भेजदे तां हैगे ही आ अपनी पोइट्री गज़ल, पर जेकर आपां उहदा मतलब समझिए ना फिर उस चीज़ नूं आ शो नूं सुनीए ना तां मज़ा ही अलग हो जांदा। दोस्तों आपां फेमस जगजीत सिंह जी दी गल कीती सी ते क्यों ना उहनां दी आवाज़ विच ही कुछ हो जाए। दोस्तों

0: थे। टाइम हो गया है, समा हो गया है 2:51। दोस्तों आप गल कर रहे थे अपने आज पोइट से गल की, आज असी फेमस पोइट जिमें कि हो गए मिर्जा गालिब जी हो गए ने, उस तो इलावा असी गल की अमृता प्रीतम जी की, जो कि आप हम करते कि उन्होंने भी एक सिगा एक शायरी सी कि अज आखां वारिस शानू कित्थों कबरां विच बोल, अज आखां वारिस शानू कित्थों कबरां विचों बोल, तेरी हीर नू कई रांझे मिल दे वारिस शाह इक्को ही सी। गल करिए अमृता प्रीतम पहली औरत सी जिसने हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जितया सी। दोस्तों वंड तो बाद उन्होंने ना वारिस शाह नू पुकारिया कि देख तेरी हीर नाल जुल्म हो रहा है। उन्हां दी शायरी औरत दे दर्द आजादी दे इनकलाब दी आवाज सी। उन्होंने सधारण शब्दां च डूंघियां गल्लां कहियां। दोस्तों उन्हां दा लिखना अज भी औरतां नू हौसला दिंदा है कि आपां कहिंदे ना कि जिहड़े राइटर्स हुंदे ने, कोई भी अगर पोइट्री लै लईए तो जिन्नियां भी आपां लाइनां सुनदे ना उहदे विच बहुत डूंघाई हुंदी है। दोस्तों ते डूंघाई नूं कदी कदी ना असीं उदों समझदे हां जदों उह चीज़ ना साडे नाल वापरी होवे। जिदां असीं शाह हुसैन दी गल करदे हां कि बुल्लिया मैनूं लै चल उत्थे जिथे ना कोई हो, जिथे ना कोई मेरा ना मैं किसे दा। बुल्लिया मैनूं लै चल उत्थे जिथे ना कोई मेरा ना मैं किसे दा, ना हिंदू ना मुसलमान सब रब दे बंदे। शाह हुसैन साडे मद्दोलाल हुसैनी भी कहिंदे हन कि ओह लाहौर दे किहड़े सूफी सन, उहनां दी शायरी हंकार ते समाजिक नियमां दे खिलाफ सी। दोस्तों ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ।
1: ਆਜ ਜਾਣੇ

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, आज है 1 जून और 1 जून को प्रतिवर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे पहले शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए

0: उनका क्या योगदान होता है हमारे जीवन में और उनका महत्व हमारे जीवन में कितना है, ये तो सब हम मानते हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमें जीना सिखाते हैं और उनकी भूमिका हमारी ज़िंदगी में ताउम्र हमारे साथ रहती है। लेकिन क्या सच में ये भूमिका निभाते निभाते कुछ बातों का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं? क्या ज़रूरी होता है कि माता पिता को भी बताया जाए कि उन्हें कैसे समझना है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है? ये कुछ बातें हैं जो हम उतना बात तो नहीं करते हैं रेडियो डॉक्टर में, लेकिन हमने सोचा इसको बात करना बेहद ज़रूरी है। और आज क्योंकि ये दिन है तो क्यों ना इस बात से आज हम शुरुआत करें इस महीने की, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी 1 जून। और इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी भी हर बार की तरह बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर्स से, हमारे आज के एक्सपर्ट्स से, जो नेविगेट करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम में और आपको बताएंगे What is the role of parents? तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हुबे अली, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
1: नमस्कार।
0: और हमारी दूसरी गेस्ट हैं अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आप दोनों यहाँ आए हैं, नमस्कार अलका जी।
2: नमस्कार, नमस्कार टू एवरीबॉडी।
0: और जैसा ये विशेष कार्यक्रम मैंने आपको बताया आज इस दिवस पर हम कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधे सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, पूछ सकते हैं क्या बताना है, क्या पूछना है आपको इस विषय के बारे में, ये आप हमें डायल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स वही हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, 011-2342-1082, 2342-1082। और व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर आप कुछ पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9868107070 पर। हमें इंतज़ार है आपके प्रश्नों का और हम स्वागत तो कर चुके हैं अपने स्पेशलिस्ट का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर अली, क्या होता है उद्देश्य ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाने का, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट?
1: ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये ग्लोबली ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मना रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखा गया है कि जब पेरेंट्स और बच्चों का जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट कहीं ना कहीं हमारा ख़त्म होता जा रहा है। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं और मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का पेरेंट्स का आपस में जो कनेक्ट होना है वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कम हो रहा है। इसी कनेक्ट को वापस जोड़ने के लिए ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जा रहा है, ताकि माँ बाप बच्चों के साथ किस तरह से अपने घर में जुड़ सके।
0: जी, आपने कहा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं अलका जी। आप ये बताइए कि ये कनेक्ट कम क्यों हो रहा है एंड हाउ इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन क्या जीवन में रोल प्ले करता है?
2: जब से बच्चा पैदा होता है तभी से बच्चा माता और पिता के साथ एक लगाव शुरू करता है और सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन बच्चे की घर में शुरू होती है माता पिता के साथ। तो इसीलिए माता पिता का कनेक्ट बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल, दादी दादू, सबको, नाना नानी, सबको बाद में मिलता है, सबसे पहले माता और पिता के साथ जुड़ता है। तो इसीलिए माता पिता के साथ का लगाव बहुत ज़रूरी है और वो लगाव बचपन से शुरू होकर एडोलेसेंट्स में जब बच्चे अपने करियर चूज़ करते हैं, कैसे अपने माता पिता से डायरेक्शन ले सकते हैं, करियर में क्या उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सब भी गेटवे जो है वो माता पिता के द्वारा होता है। टीचर से सीखते हैं पर घर में क्या परिस्थिति है, घर में क्या करना चाहिए, वो माता पिता के साथ का कनेक्ट है। इसीलिए माता पिता का बच्चे के साथ नर्चरिंग, शुरू में लगाव, स्टिमुलेशन से लेकर जबकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, अंत में जब बच्चा घर छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, अपना परिवार बनाने लगते हैं, तब तक माता पिता का जुड़ाव और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो
0: जी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल हम ये भी सुनते हैं कि जब बच्चे एडोलेसेंट में आते हैं, छोटे बच्चे तो फिर भी हम देखते हैं कि माँ बाप से हर चीज़ पूछ लेते हैं, उनसे सलाह भी लेते हैं स्कूल जाते वक्त, बच्चे पढ़ाने लिखाने में भी बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं माँ बाप उसमें पूरी तरह से दखल रखते हैं, लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंट एज में आता है तो हम अक्सर माँ बाप को कहते सुनते हैं कि अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है, अब तो हमारी चलती ही नहीं है, अब तो हमें डरना पड़ता है बच्चों से। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये एडोलेसेंट एज में जब आता है, इसको कैसे डील किया जाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है?
2: सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता पिता का बच्चे के साथ जुड़ना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन जो हम कहते हैं। बेसिकली क्या है कि बचपन से एडोलेसेंट्स में जाते हुए और ज़्यादा इंटेंस चेंजेस होने लग पड़ते हैं बच्चों

0: में वो अपने आप को समझना शुरू करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस की सोच रखने लग पड़ते हैं, उन्हें लगता है कि अब हाइट तो मेरी बढ़ गई है, अब मेरा ओपिनियन भी बढ़ना चाहिए, तो उनको ज़्यादा जानकारी मिलती है स्कूल से। तो माता पिता का रोल उसमें शुरुआत से ही है लिसनिंग का, सबसे पहले सुने अपने बच्चों को, उनको समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो उनकी उनको जज नहीं करना है, उन्हें अपने बच्चों से डरना भी नहीं है, उन्हें बच्चे को साथ लेकर चलना है, सुनना है, समझना है, उससे बातचीत करनी है। अगर बातचीत करते रहेंगे अपने बच्चों के साथ तो जुड़ाव रहेगा और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी जहाँ पर वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और बच्चे की सोच को समझकर उसे बदल भी सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। वो ज़माना गया जब हम लोग छोटे थे और हम अपने माता पिता की बात, क्योंकि वो पिता कह रहे थे तो उस बात को समझ लिया। अब बच्चों को जानकारी है, मोबाइल है, स्कूल है, उनके दोस्त हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। कभी कभी किसी किसी विषय में उनकी जानकारी माता पिता की जानकारी से भी ज्यादा होती है। तो उस किस्से में, उस सिचुएशन में बच्चे की बात सुनना, उसे समझना और अपनी समझ से उसे बातचीत में, बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बात बनेगी तो बात बढ़ेगी ना,
1: बात
0: तो
1: से बात बनेगी,
0: बिल्कुल बात बनेगी।
1: और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि पहले से हम कंपेयर करते हैं कई बार कि हम जब छोटे थे तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमें जो कहा जाता था हम सुन लेते थे, लेकिन इसको जज नहीं करना है, जैसा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली। और जैसे समय बदलता है उस हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना है। बच्चों का एक दूसरी जनरेशन जब होती है तो उसका एक अलग माइंडसेट होता है और अलग उनका एक सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। जैसे आजकल डिजिटल एज है तो बहुत सारी चीज़ें आ भी गई हैं, तो इस बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1080, 2342-1082 पर। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम डेयर टू डॉक्टर, मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल, और आज बात कर रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। और आज हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद अली और अलका मल्होत्रा जी। और हम बात कर रहे थे पेरेंट्स की आवश्यकता क्या होती है बच्चों के लिए, उनकी क्या महत्ता होती है, इस पर तो कोई वाद विवाद है ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एक दूसरे के लिए वो लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिसकम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया कि सही कम्युनिकेशन या कनेक्ट ना हो तो भी प्रॉब्लम्स बहुत विकराल रूप ले सकती हैं। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटिंग में अक्सर महिलाओं को ही ज़्यादा फोकस में रखा जाता है, और पुरुषों से उतनी ना तो उम्मीद की जाती है ना उनको पेरेंटिंग में उतना शामिल किया जाता है। तो अगर हम पुरुषों के रोल पर बात करें, फादर के रोल पर बात करें, तो अलका मैम आप क्या कहेंगी, क्या रोल होना चाहिए आपके हिसाब से फादर का?
1: पेरेंटिंग जो है ना, ये एक जैसे शादी 50-50 का रोल होता है ना, वैसे पेरेंटिंग भी 50-50 का रोल होता है। बहुत सारे स्टडीज़ की गई हैं और बार बार निकल के आता है कि माता से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, माता उसे समझाएगी, बचपन से माता केयर का रोल करेगी, माता स्टिमुलेशन करेगी, माता खाना खिलाएगी, जबकि ये सारी चीज़ें पिता कर सकते हैं। और पिता जब करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बढ़ती है। तो चाहे वो स्टिमुलेशन है, कितने पिता हैं जो अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद लगाते हैं, गले लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं, ये सब चीज़ें जो फिज़िकल कांटेक्ट होता है ना पिता और माता के साथ, उसके साथ लगाव बढ़ता है। तो पिता के साथ अगर पिता यही रोल करेंगे तो उनके साथ भी लगाव जो है बच्चे का वो बढ़ेगा बचपन में। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी के गाने में भी हमने सुना से पिता से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, चॉकलेट
0: जी
1: जो कि बिल्कुल ठीक है, आप चॉकलेट एक्सपेक्ट करिए अपने पिता से, पर साथ साथ आप पिता से कहानी भी एक्सपेक्ट करिए, आप पिता से ये भी एक्सपेक्ट करिए कि वो आपको घूमने लेके जाएंगे। एक हमने स्टडी करी थी 3 प्रदेशों में, और निकल के आया कि पिता जो है वो घर लौट के बच्चे को अपना मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने टॉय दे दिया, ये हो गई मेरी पेरेंटिंग का रोल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा

0: मोबाइल फोन नहीं चाह रहा है, बच्चा माता पिता से बात करना चाह रहा है, तो बच्चे के साथ खेलिए, उसे बातें बताइए, उसको कहानियाँ सुनाइए, उसको उठाइए, उसको गोद में लीजिए। अडोलेसेंट्स में हम लोग देखते हैं नॉर्मली फादर जो है ना वो एब्सेंट और फन पेरेंट माना जाता है, चॉकलेट देने का पेरेंट, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे से बातचीत करना, लगाव बनाए रखना, उसे गोदी में बिठाना और उससे अपना प्यार बढ़ाना। तो चाहे वो खाना खिलाने का समय है या वो हग करने का समय है, सुलाने का समय है, पिता इक्वल रोल प्ले कर सकते हैं।
1: जी, और जैसे आपने कहा, हमने और जिक्र किया कि कई बार अगर हम पुरानी कुछ पीढ़ियों पर नज़र डालें तो बहुत कैटेगोरिकली रोल डिस्ट्रीब्यूटेड था, जैसा कि अब वो लाइंस थिन हो रही हैं या ब्लर हो रही हैं या कहीं कहीं गायब भी हो रही हैं, क्योंकि अब इक्वली वुमेन भी वर्क कर रही है, घर से बाहर निकल रही है और उतना ही दिन या समय वो अपने कार्यस्थल पर भी रहती है, तो उसको पूरी तरह से बच्चे को देखना या उससे एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह देख पाए, वो भी उतना इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जब रोल या चेंजेस होते हैं समाज में, तो उस तरह से एक माइंडसेट में भी रोल या डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली इस बारे में आप, कि कैसे ये चेंजेस माइंडसेट्स में आने चाहिए?
2: हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैडम ने बताया 50-50 का जो रोल है, क्योंकि अभी जैसे महिलाएं भी वर्क्स प्लेस पे बहुत टाइम गुजारती है, तो दोनों अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे गाने में सुना कि माँ लोरी सुनाएगी, तो ये पिताजी भी लोरी सुना सकते हैं। एक मेरे को लगता है कि जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई फादर है बच्चे को देख रहा है तो बहुत चैंपियन है, वो स्टीरियोटाइप बदलना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो दोनों अगर मिलके करेंगे तो बच्चे का अपब्रिंगिंग भी होगा, और बहुत से जगह में बहुत से स्टडीज़ भी ये निकल के आ रहा है कि अगर दोनों माता और पिता दोनों बच्चे के अपब्रिंगिंग में इक्वल ये लगते हैं, तो बच्चे का मानसिक, फिजिकल और इमोशनल तीनों भी अपब्रिंगिंग अच्छे से होते हैं।
1: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ यहाँ पर फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल पूरी तरह से एक पर्सनालिटी की अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं कि वो बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी बने। और यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं, डॉक्टर अली और डॉक्टर अलका जी, आपको और शालिनी मैम को ग्लोबल पेरेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, वर्तमान में तीन जनरेशन मौजूद हैं, 1950s, 1990s और 2026। आज के समय में पेरेंट्स को शिक्षित और अनुशासित होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और बिल्कुल यही मेरा अगला प्रश्न भी था अलका जी आपसे, कि कई बार होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन हम कई बार वो खुद फॉलो नहीं कर पाते, चाहे फ़ोन से रिलेटेड बात हो कि हम मोबाइल पर हैं और हम बच्चों के कहेंगे कि मोबाइल मत देखो ज़्यादा, तुमको नुकसान करेगा, या फिर ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर अपने हेल्थ या हाइजीन की बात हो, या स्लीप की बात हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए?
0: मेरे ख्याल से तो जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग, जब तक आप पेरेंट नहीं बनते हैं ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे ही आप पेरेंट बन जाते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं वो उसका ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर, बनिस्पत के जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को वॉच नहीं करेंगे, अगर आप सच नहीं बोलेंगे और आप कोई भी बात को टाल देंगे, तो बच्चा भी टालने की आदत फटाफट सीख लेते हैं। बच्चे फ़ोन तो एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे को कह रही हैं कि देखिए तुम अपना समय फ़ोन के ऊपर आधा घंटा दीजिएगा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, और आप सारा टाइम फ़ोन पे लगी हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा समझ रहा है कि ये रूल इनके लिए नहीं अप्लाई करता, मेरे लिए करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में क्या डिफरेंस है जो कि इनमें नहीं है। तो धीरे धीरे करके जो भी आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे खुद करके दिखाइए, तो उससे बच्चा सीखने लग पड़ता है। अब हम जेंडर सोशलाइजेशन की भी बात करते हैं कि महिला काम करने जाने लग पड़ी है, पुरुष किचन में जा सकते हैं, पुरुष खाना बना सकते हैं, पुरुष खाना परोस सकते हैं, केयर कर सकते हैं बच्चों की भी घर में और बड़े बूढ़ों की भी। यही चीज़ अगर वो अपने घर में देखेंगे कि मेरे पिता भी किचन के अंदर जाते हैं, मेरी माता लाइट बल्ब बदल लेती है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये कोई जेंडर्ड रोल्स नहीं है कि ये पिता ही कर सकता है और ये माता नहीं कर सकती और ये माता ही कर सकती है।

0: पिता नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रोल मॉडलिंग। तो जब आप पेरेंट बन जाते हैं तब ऑल द मोर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं है कि आप क्या बता रहे हैं, पर आप क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चे को। और वही चीज़ बच्चे बार बार सीखते हैं। शाउटिंग इज़ अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। आप बच्चे को बोलिएगा कि आप ऊंची आवाज़ में बात मत करिए, और आप माता पिता एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
1: और माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व करते हैं,
0: सब ऑब्जर्व कर ले।
1: जी जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पा

0: आवाज में बात कर रहे हैं, हर एक बात में डिसअग्री कर रहे हैं, हर एक बात में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बच्चा तो समझ गया ना उसी समय कि ये तो हाथी के दांत दिखाने
1: जी,
0: के और खाने के
1: और
0: और
1: माता पिता ये समझ रहे हैं कि बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो सब ऑब्जर्व
0: वो
1: करते
0: सब
1: हैं।
0: ऑब्जर्व करते
1: जी
0: हैं।
1: जी जब हम स्लीप की बात करें, हाइजीन की बात करें, अलका जी ने बताया किस तरह से हमें करके रोल मॉडल बन के दिखाना है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, कई बार हमने ऐसा भी देखा है कई घरों में कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स या प्रेशराइज किया जाता है कि आप पढ़िए, आपको कुछ बनना है, या कुछ उनकी ऐसी पेरेंट्स की अपनी इच्छाएं हैं जो वो नहीं कर पाए या कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वो उनको प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, और इससे कई बार बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ तो कई बार वो ऐसा स्टेप भी उठा लेते हैं कि अपने को नुकसान पहुंचाना, या सुसाइड तक बात कई बार पहुंच जाती है, मेंटल उनका ब्रेकडाउन भी हो जाता है। तो इस तरह से किस तरह से उनको हैंडल किया जाए इमोशनली कि मेंटल हेल्थ उनकी सही रहे, और अगर ऐसा कोई डील कर रहा है तो क्या सिम्टम्स उसमें देखने चाहिए कि उन्हें पता लगे कि मेरा बच्चा उस तरफ तो नहीं जा रहा है।
2: हाँ, सबसे पहले प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ये देखें कि हमने एक स्टडी की थी कि ड्राइवर्स क्या है ये मेंटल हेल्थ के बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, एनजाइटी है, डिप्रेशन है या सेल्फ हार्म है, तो उसके हमको तीन ड्राइवर्स मिले हैं। ग्लोबली भी ये स्टडी है, यूनिसेफ WHO की, और इंडिया में भी ये स्टडी है। एक तो जो घर में कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों के, ख़ास तौर के यूथ, यंग अडल्ट्स के ऊपर जो मानसिक प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चे इसे कोप नहीं कर पाते, इसलिए ये सेल्फ हार्म टेंडेंसीज या घर से बाहर रहना, दूर रहना, अकेले रहना ये शुरू कर देते हैं। ये एक हुआ। दूसरा, इस एज में पर्टिकुलरली यूथ्स और यंग एडोलेसेंट्स में लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी बच्चे एनजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो आपने बताया प्रेशर, या तो एग्ज़ाम का प्रेशर है या जॉब लगने का प्रेशर है, ये तीन जो ड्राइवर्स हैं ये बच्चों के लिए मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत काम कर रहा है। इसके नॉर्मल सिम्टम्स यही होते हैं कि बच्चा खाना अगर आपके साथ बैठा है तो आपके साथ बैठना नहीं चाहता, बात आँख मिला के करना नहीं चाहता, अकेले अकेले ज़्यादा रहना चाहता है बच्चा बच्ची जो भी हो, तो आइसोलेशन अपने आप को कर लेना, ये फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा, खुल के बात ना करना, हंस नहीं पाना, और आँख में आँख डाल के बात नहीं कर पाना। और इसमें जो पेरेंट्स का जो मेन रोल है, थेरेपिस्ट तो जो करेगा सो करेगा, पेरेंट्स को चार चीज़ें, अगर आपका बच्चा इस किसी भी स्थिति से गुजर रहा है, सोशली अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, तो चार चीज़ें करें। एक तो उसकी बात को आप समझे, पहले उससे बात करें, लिसन एंड डू नॉट एडवाइस। हम लोग बहुत जल्दी बच्चे को एडवाइस करना शुरू कर दें, तो बच्चे की बात को हम सुने, एक। दूसरा, हम उसको ये बताएं, उसको रीअश्योर करें कि भाई मेरा आपको सपोर्ट होगा, जो भी परिस्थिति आप गुजर रहे हैं वी आर देयर टू हेल्प यू, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरा, अगर उसको कोई ख्यालात आ रहे हैं या उसको कभी कभी हेलुसिनेशन डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सक्लूसिवली चैलेंज ना करें, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, एकदम से जो नहीं करके हम कहते हैं तो ये ना करें। और चौथी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, बच्चे के साथ में मिलके उसके साथ सॉल्यूशन को ढूंढें, ना कि अपना सॉल्यूशन उसके ऊपर थोपे। तो अगर ये चार चीज़ें हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हम इसमें से निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। या एक और होता है कि बच्चा अगर ऐसे कुछ कर रहा है तो उसका ये स्कूल में प्रॉब्लम है, स्कूल चेंज कर दिया, यहाँ पे है माँ के घर भेज या नानी के घर भेज दिया, शादी करके दे दो, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। उसको आप बात को समझिए, थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। अभी तो बहुत से सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम की है। टेलीमानस में आप बात कर सकते हैं 144-16 नंबर 14416 पे 24/7 कॉल करके अपना वार्तालाप कर किया जा सकता है, काउंसिलिंग की जा सकती है, मनोदर्पण के थ्रू इसे बात की जा सकती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक से आप सब डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो उसके नीचे CSC यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो काउंसिलर है उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहाँ जाके भी आप वार्तालाप किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है, प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चे की भावना को समझें और उसको सही दिशा में ले जाएँ।
1: जी, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हमें इस कार्यक्रम में आज पता लग रही हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए 2342-1080, 2342-1082 पर, व्हाट्सएप के लिए 9868-107070 पर आप हमें लिख सकते हैं। हमें श्रोता लिख रहे हैं कि उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, विषय हमें पसंद आ रहा है और बहुत अच्छी जानकारी आपके विशेषज्ञों के माध्यम से में मिल रही है। तौसीफ अहमद हमें लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कि इनकी एक बेटी है अभी 2 साल की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि किस तरह से उसको पाले पोसे।

0: इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ मदद मिल सके।
1: 2 साल का बच्चा है, सबसे पहले तो बच्चे के जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका हुआ होगा डिलीवरी, तो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड करके आता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि 2 साल के बच्चे के क्या माइलस्टोन्स रहने चाहिए। बच्चे को आप साथ में रखिए, बच्चे को आप खिलाने में आप माता और पिता दोनों भी भागीदारी करिए, बच्चे से बात करिए। हम लोगों को लगता है कि 2 साल का बच्चा क्या ही बात करें, मगर आप जितना उससे बात करेंगे उतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट माता पिता के साथ बच्चे का बढ़ता है। तो जैसा जैसा बच्चा आपके साथ बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को उसी तरह से साथ में बड़ा करिए, ना कि अभी बहुत से घरों में देखा जा रहा है कि माता पिता दोनों जॉब पे है तो नैनी के साथ ही बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो वो कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ रहा नहीं जाता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका बच्चा वो छोटा है बच्ची, उसके साथ अगर आप ग्रो होंगे तो जो एडोलेसेंट अवस्था में आके अगर हम बच्चों को, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं और बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि अब इनको मेरी याद आ रही है और ये अब मेरे ऊपर जो है बॉसिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। तो ये छोटे बच्चे के साथ जब आप खुद बड़े होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे।
0: साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत कमज़ोर है इनकी बेटी, तो इसका मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया इमोशनल तो देना ही है, फिजिकल पे भी इन्हें ध्यान देना होगा। देवदत्त पारसोलिया जी हमें लिख रहे हैं कि इन्हें ये विषय बहुत पसंद आया है और एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह से हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर विशेष रेडियो डॉक्टर। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गीत सुनकर वापस आएंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स 4 बजे तक स्टूडियो में रहेंगे।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार शालिनी जी, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी जी यशपाल जी, बताइए क्या पूछना है आपने। हाँ, विषय सुन लिया हमारा।
2: हाँ, टॉपिक अच्छा है, दोनों एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बोल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट। हाँ, आज बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
2: मेरा शालिनी जी, मेरा इशू है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड है। अब जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, मतलब जो 40 से जिनकी कम है, 40 से कम के, तो उनकी खुद की ये जो लाइफ स्टाइल है, मतलब ऐसे अनहेल्दी है, डिसिप्लिन नहीं है, दोनों वर्किंग भी हैं, तो उनको ज्यादा हेल्थ का इम्पोर्टेंस भी नहीं इतना, आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इम्पोर्टेंस। तो वो इस वजह से या कुछ दूसरे मजबूरी से दे, मतलब वो बच्चों को भी उतना नहीं टेक केयर कर पाते हैं। तो सबसे मुझे ये फियर है, लगता है कि मतलब बच्चे भी जो आगे भविष्य में भी उनको हेल्थी हेल्थ वाइज उनका जो है ना इशू वो रहेगा, दे विल नॉट बी हेल्दी जनरेशन। बस एक मेरा इसी पर।
1: जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यशपाल जी, और इसीलिए जरूरत पड़ रही है हमें ये कार्यक्रम भी करने की, क्योंकि सीधे कहीं ना कहीं ये जो रोल है पेरेंट्स का, ये उनके स्वास्थ्य पर, हमारे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। जैसा आप डर दिखा रहे हैं, ये डर हमारा भी है, और इसीलिए हम आज गेस्ट लेकर आए हैं, स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, कि वो बता रहे हैं कि सीधे सही अच्छी पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए और हेल्थ पर कैसे ध्यान देना चाहिए। कुछ आप और कहना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे?
2: हाँ नहीं, बस इनकी एडवाइस थोड़ा लेना चाह रहा था कि इसमें कैसा कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब ठीक होने का कुछ।
1: जी जी, मैं हमारे विशेषज्ञ से पूछ लेती हूँ, किस तरह से माइंडसेट चेंज किया जाए बच्चों का?
3: देखिए, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही समय पर जो भी भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही समय पर खाएं। आप जब भी खाना खाते हैं तो अकेले अकेले ना खाएं, हम जब आप पेरेंट्स खा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर खाना खाएं, और खाने में जो जंक फूड है इसको हम लोग अवॉइड करें अगर हेल्दी रहना है। खाने के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और जो कुछ हमारी बुरी आदतें हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, तो फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। तो आप खाने के घंटा पहले और खाने के घंटे बाद तक चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अच्छी आदतें डालें, हम लोग खुद भी हेल्दी रहें, बच्चों को भी इस हेल्थ की आदत डालें, हेल्दी फूड की।
4: हेल्दी फूड और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
1: जी, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और ये आजकल देखा जा रहा है कि जो सर्वेज हुए हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं खेल रहे हैं। जैसा आपने एक्सरसाइज की बात की कि बैठे बैठे ही, क्योंकि आजकल गैजेट्स बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन पर या टीवी पर या मोबाइल पर वो मैक्सिमम समय अपना यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जैसे नेक पेन, और ये इस पर हम कार्यक्रम करते रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि जो इस तरह की जब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं और उनको समझ नहीं होती है उस एज में, कई बार बहुत यंग छोटे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दे दी जाती है पेरेंट्स द्वारा, तो जब बहुत छोटे हैं उनको पता नहीं है किस तरह से साइबर फ्रॉड हो सकता है उनके साथ, तो ये सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, या ऑनलाइन सेफ्टी, और किस तरह से पेरेंट्स भी खुद समझें और बच्चों को समझाएँ?
4: एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन स्पेस में ये है कि आप खुद अपना बिहेवियर मॉडल करें। तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में कम रहेंगे तो फिर ही आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप भी ऑनलाइन कम रहिएगा फर्स्ट। तो अपने आप को मॉडल करिए कि आप अपना समय कितना बिता रही हैं फ़ोन पे, कितना समय पिताजी बिता रहे हैं फ़ोन पे, कितना वो स्क्रोल कर रहे हैं ये सब रील्स को, और फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि चलिए आप दोनों, अब उसमें फिर कॉन्वर्सेशन, बातचीत बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बच्चे के साथ तय किया जाए कि आप फ़ोन पे कितना समय बिताएंगे। देखिए, कुछ तो ऑनलाइन काम आजकल स्कूल से भी आने लग पड़ा है, तो इसीलिए अगर हमें उसको भी डिस्काउंट करना है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के काम के लिए इतना समय और आपकी अपनी एंटरटेनमेंट

0: इंपॉर्टेंट आपकी फ्रेंड्स को कैच अप या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए इतना समय, वो आपको बच्चे के साथ तय करना पड़ेगा। यदि आप बच्चे के साथ तय करेंगे तो फिर उसका उसको बच्चे के साथ ही ट्रैक करिए कि अगर हमने फैसला किया था दोनों ने मिलके कि आधा घंटे का समय हम लोग बिताएंगे, उसमें से एक घंटा मान लीजिए आपको स्कूल के काम के लिए चाहिए, आधे घंटे का टाइम आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, तो आपने कब फ़ोन उठाया और आपने कब उस फ़ोन को रखा, ये दोनों ट्रैक करेंगे, माता पिता और बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बाउंड्रीज, दूसरा उसको ट्रैक करिए खुद दोनों मिलकर, और तीसरी चीज़ खुद आप भी समझिए कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल सकती है। ये जानकारी चाहे आपको स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके करनी पड़े या आपको स्कूल की टीचर से बात करके जानकारी लेनी पड़े और पेरेंट्स से जानकारी लेनी पड़े उनके बच्चे कितना समय बिताते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अपने आप को इस बारे में जागरूक रखना पड़ेगा कि बच्चे कितना समय मोबाइल फ़ोन पर और इंटरनेट पर, मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट पर बिता रहे हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकती हैं, क्या कितना स्क्रीन टाइम, आजकल तो ऐप्स आपको बता देते हैं कितना स्क्रीन टाइम आपका बच्चा यूज़ कर रहा है, तो वो उन सब डायमेंशंस को खुद को पहले जानकार पढ़ना पड़ेगा, तो वो जानकारी आपको टीचर से, आपको प्रिंसिपल से, आपको अपने फ्रेंड से मिल सकती है। तो अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करिए, फिर अपने बच्चे के साथ तय करिए कि कितना समय के वो बताएंगे। और जो अभी डॉक्टर अली कह रहे थे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर देखते रहिए कि उनको उस ऑनलाइन स्पेस से ज़्यादा मेंटल प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, वो आइसोलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। यू हैव टू वॉच द चाइल्ड्स बिहेवियर, आपको खुद देखना पड़ेगा कि बच्चे की आई कॉन्टैक्ट की बहुत अच्छी बात करी डॉक्टर अली ने, तो क्या आपका बच्चा आपसे बात करने में, ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करने में, क्या वो खुलकर बात कर पा रहे हैं कि वो बच्चे कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं, तो ये आपको ओपननेस रखनी पड़ेगी, फिर ही आप खुद दोनों मिलकर एक ऑनलाइन सेफ स्पेस तय कर सकते हैं।
1: जी, इस बीच हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ बात करना चाहते हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार शालिनी
1: जी। जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: मैं विचित बेदी बोल रही हूँ।
1: जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या कहेंगे?
2: नमस्कार शालिनी जी, आजकल कुछ पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ही स्कूल है, मेरी दीवार के साथ, वहाँ टीचर ये ग्रज करती हैं कि अगर बच्चे का रॉन्ग है उस पर अगर काटा लगा दिया तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं। बच्चों को थोड़ी हमें ना सुनने की आदत होनी चाहिए। हम हर बात उनकी मान लेते हैं तभी हम प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं।
1: जी, ये एक बात इनकी सोच है और कुछ हद तक सही भी है, ऐसा हमने भी देखा है। क्या कहेंगे डॉक्टर अली?
2: ऐसा है ना, हेलो, नहीं मैं बीच में सॉरी बात करती हूँ, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं पेरेंट्स, जिससे कि बच्चे जो है वो इमोशनली बिल्कुल जीरो हो गए।
3: ये जो मुद्दा है, बहुत से पेरेंट्स अभी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप बच्चे को जिस भी स्पोर्ट्स में हो, ज़रूर ये कोशिश करें कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स में रहे। स्पोर्ट्स में बच्चा रहेगा तो कभी जीतेगा कभी हारेगा, और इससे बच्चे को हार और उसके पेरेंट्स को हार में भी किस तरह से खुश रहना चाहिए, ये स्पोर्ट्स सिखाता है। तो जो ओवर प्रोटेक्शन का जो मसला आ रहा है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है, घर में बैठे हैं तो आप अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ इस तरह से गेम्स करते रहिए जिसमें बच्चा हारना और जीतना, पेरेंट्स हारना और जीतना दोनों को फेस करे, तो आपस में फिर सीख जाते हैं कि किस तरह से, भाई गलती हो तो गलती को गलती मानो, तो उससे फिर ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी,
2: सबसे बड़ी टीचर है, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ साल मदर जो जॉब भी करती हैं, कुछ छुट्टी लेके बच्चों साथ इमोशनली जुड़े, उनको बचपन अपना सुनाए, उनकी बातें सुने, एक दूसरे के दिल में घुसें। जैसे
1: बिल्कुल यही बात अभी अलका जी कह रही थी कि कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जब कनेक्ट होगा, एक दूसरे की बात समझेंगे, तभी बात से बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी हमसे कनेक्ट करने के लिए। एक और हमारे श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार शालिनी
1: जी। नमस्कार जी,
4: बताएं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार,
4: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताएं, क्या पूछना है?
4: मुझे ये पूछना है कि जैसे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और उनको उनका कैसे हो। आजकल के बच्चे ये देखे जाते हैं कि वो कमजोर टाइप के हैं, जैसे हमारे बराबर वो

0: उतना काम या कुछ कर नहीं सकते, और जैसे उनको कुछ चीज बताओ तो ऐसे मायूस से हो जाते हैं। तो ये बच्चों का विकास और शारीरिक विकास कैसे होगा?
1: जी बच्चों को अपने वार्तालाप के सेंटर में रखिए। मैं आपको एक बताता हूँ, बराक ओबामा को जब नोबल प्राइज़ मिला था तो उन्होंने फ़ोन करके अपनी बच्ची को जो 11 साल की है और दूसरी बच्ची 8 साल की, उन्होंने कहा मुझे देखो वो नोबल पीस प्राइज़ मिला है। तो बच्ची ने कहा अरे आज आप भूल गए, आज बो का बर्थडे है, बो है उनका पोर्चुगीज़ पोर्चुगीज़ कुत्ता घर का, फैमिली डॉग। दूसरी बेटी ने कहा अरे 3 दिन का वीकेंड की छुट्टी है, आप कैसे भूल गए हमारा। तो मतलब जो नोबल प्राइज़ है आप, हम जान रहे हैं उसकी क्या अहमियत है, मगर बच्चे को अगर सेंटर, बच्चे के लिए उसकी समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगर माता पिता बच्चे को सबसे ज़्यादा सेंटर पे रखे, भाई वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, वो उसका मानसिक मतलब स्कोलेस्टिक स्कूल में परफॉर्मेंस, घर में परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रह रहा है, अगर वो टच और कनेक्ट आप शुरू से रखेंगे तो ये जो समस्या आ रही है कि बहुत बच्चा मेरा कमज़ोर हो गया मैं, तो ये बातें नहीं आएंगी, बहुत हद तक आप इसको ख़त्म कर सकते हैं।
2: जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैसेज हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं। ये मैसेज हमें लिखा है नानी तरिंग जी ने अरुणाचल प्रदेश से, और उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी अकेले पेरेंट हैं, बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी, बट लास्ट वीक पिताजी और मेरा झगड़ा हो गया, नाउ आई डोंट नो वॉट टू डू, ये पूछ रहे हैं।
1: देखिए आप पिताजी, आपने पहले ही बताया कि पिताजी ने मुझे जो है बचपन से ये किया है और आपकी अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप वार्तालाप कीजिए। जैसे अलका जी ने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, अभी तो आपकी शुरुआत डिसएग्रीमेंट की, आगे जाके और बहुत सी बातें होंगी जिसमें डिसएग्रीमेंट होगा, पर ये डिसएग्रीमेंट का हल जो है आपस में बात करने से ही सुलझा जा सकता है।
3: और इसमें पहले आपका तो सवाल ही नहीं उठता ना, आप फ़ोन उठाइए, सीधा जाइए और पिताजी से बात करिए और अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करिए। ज़रूर जब आप एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगी तो कोई ना कोई हल निकल आएगा।
2: जी अगर, और मुझे लगता है कि आप अभी देर ना करिए, जैसा अलका मैम कह रही हैं, जैसे अली सर कह रहे हैं, आप फ़ौरन कॉल लगाइए अपने पिताजी को, उनसे बात कीजिए और जो भी आपकी मिस कम्युनिकेशन या जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर करिए, और हमें मैसेज करके या मेल करके हमें ज़रूर बताइए कि आप कितने खुश हैं अब, क्योंकि आप बहुत, आपको बहुत खुशी मिलेगी जब आप अपने पिताजी से बात कर पाएंगे और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर पाएंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर, और अपने फीडबैक्स भी आप सभी हमें उस पर भेज सकते हैं। एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, हेलो।
4: जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
4: दीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी जी स्वागत है, बताएं।
4: मेरा कहना है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक शब्द आता है डिमेंशिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं मति भ्रंश, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो मेरा पूछना है कि वास्तव में इसमें क्या होता है, मतलब ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है, और बच्चों में भी ये बीमारी होती है क्या, कृपया विस्तार से बताइए।
2: जी मैं पूछती हूँ, हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं आपकी बात को। जी
1: डिमेंशिया मतलब मेमोरी में स्लोली स्लोली कमी हो जाना, आमतौर पे ये बच्चों में नहीं होती है, आमतौर पे ये होती है 60-70 साल के बाद, स्लोली स्लोली जब एजिंग का शुरू होता है तब लोग अपनी अपनी मेमोरी खोलने लगते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक जो पुरानी मेमोरी है, जो पक्की मेमोरी होती है बचपन की मेमोरी, वो इंसान बहुत जल्दी खोता नहीं है, बहुत जल्दी क्या खोता है, जो रिसेंट पास की जो मेमोरीज है वो चली जाती है। पर अगर बच्चे में अगर इस तरह की कोई बात है कि वो भूल रहा है तो उसको जो है स्वास्थ्य कर्मी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ ये होता है, पर उसके अंदर जो है घर वालों को समझ के उसके साथ ये करना ज़रूरी है। पर अगर बच्चे में अगर किस तरह से अडल्ट है, यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट है, या बच्चे में अगर डिमेंशिया का कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाना चाहिए।
2: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे पास मैसेज, दो मैसेज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग एक सी बात है, इसमें मैं दोनों को एक साथ लेना चाहूँगी। इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंट फादर, अगर सिंगल मदर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी में। और दूसरा प्रश्न किया है अशोक जी ने दिल्ली से कि मेरा 8 साल का बच्चा है और वो मेरे साथ रहता है, वाइफ मेरी वर्किंग है, 600 किलोमीटर दूर रहती है, बच्चे के इमोशंस को कैसे पहचानें, क्या करें कि उनको मदर की एब्सेंस फील नहीं हो। तो कहीं भी जहाँ पर एक पेरेंट मिसिंग है तो कैसे डील किया जाए?
1: एक पेरेंट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं तो इशू तो है, क्योंकि दोनों पेरेंट का बच्चे का बड़ा होना और एक पेरेंट में बच्चा बड़ा होना, ये दोनों में काफ़ी अंतर होगा। आप एज अ सिंगल पेरेंट यही है कि हम

0: बच्चे को अगर माता है तो माता पिता दोनों की तरह से प्यार दे, क्योंकि आप और अब आप काम कर भी रहे हो। जैसे बच्चे को आप नींद में से उठने से देखे लास्ट में सोए तक खाना खिलाने का सारा कुछ काम आप कर रहे हो, तो आप बड़ा काम तो कर रहे हो। या तो आपका पेरेंट एब्सेंट है, या मतलब या तो डाइवर्स केस है, या फिर दूर है किसी काम की वजह से, तो आप अपना प्यार बच्चे को तो दे रहे हो। इसमें यह है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई सिंगल पेरेंट है, आप भी अपने काम में व्यस्त है, तो जो ज़रूरी है वो ज़रूरत वाला काम कर दिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग गए। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ द सर्कमस्टेंसेस अगर ये मांगता है तो आपको माता पिता दोनों बनना पड़ेगा अगर सिंगल भी है तो।
1: जैसा अभी उन्होंने भी लिखा था अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने कि उनके फादर ने भी उनको बचपन से अकेले पाला और कभी उनकी कमी महसूस होने नहीं दी मदर की। तो ऐसा नहीं है, पूरी तरह से एक डेवलप पर्सनालिटी हो सकती है। अनिल कालरा जी, डॉक्टर अनिल कालरा हमें गुरुग्राम से सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और ये हमें लिखकर भेजा है सरोज मल्होत्रा जी ने साकेत मेरठ से। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे दूसरे बच्चे से कंपैरिजन बहुत करते हैं और एजुकेशन का प्रेशर बहुत है, मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम है। ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, किसी के पास फुर्सत नहीं है इसको सिखाने की।
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन सबसे पहले हमको बच्चों में और आपस में भी बात कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन हमको एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल। जो भी बच्चा कर रहा है, कितना एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, वो उस बच्चे की आप कितनी स्ट्रेंथ है वीकनेस है उस पर काम करें, ना कि हम किसी को भी कंपेयर करें। तो जो कंपेरिज़न की टेंडेंसी है हमारी टीचर्स को, हमारे घर में पेरेंट्स को और दोस्तों में भी, इसको पहले ख़त्म करना चाहिए। अननेसेसरी दिस इज़ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन।
2: और इसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट है ना, वो खुद कंपैरिजन करना बंद करें।
0: बंद करें।
2: सबसे पहले आप खुद कंपेयर करना बंद करिए, और फुर्सत की तो बात करिए ही मत, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप बच्चा दुनिया में लाए हैं ना और आपके घर में बच्चा है, तो आपको फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। उसकी सिर्फ फिज़िकल केयर और फिज़िकल नीड्स को नहीं लुक आफ्टर करना है, उसकी इमोशनल नीड्स को, उसकी सोशल नीड्स को भी आपको लुक आफ्टर करना है। इसीलिए अगर आपने पेरेंट बनने का जिम्मेवारी ली है, तो आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आई मीन दैट्स अ गिवन। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बिफोर यू बिकम अ पेरेंट, बी रेडी फॉर पेरेंटहुड, बिकॉज पेरेंटहुड इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और उसके लिए उसका कोई एस्केप रूट नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे को लाए हैं तो उसको समय देना होगा।
1: जी, और आजकल हम यही देखते हैं कि ये जो बात हो रही है, फुर्सत नहीं है, ये तो एक अलग बातचीत का मुद्दा है, लेकिन लेट मैरिजेस हो रही हैं, मदर्स और फादर दोनों लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके, तो जब लेट मैरिजेस हो रही हैं, बच्चे प्लान कई बार नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट कर रहे हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट डालता है?
2: एब्सोल्युटली डालता है। और उसके लिए अगेन, जब आपने लेट मैरिज करी, आप अपने अपने करियर पाथ में बहुत एंट्रेंच हो गए हैं दोनों माता पिता, पर अगर आपके लाइफ में एक बच्चा है, जैसे डॉक्टर अली भी कह रहे थे, तो बच्चे को नैनी, बच्चे को दादी नानी के ऊपर ना छोड़कर अपना समय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी आपको बच्चे के साथ समय, सबसे ज़रूरी बच्चे के साथ समय, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ कनेक्ट बनाना, उसको कडल करना, उसको इमोशनल उसके साथ चीज़ें करना, कहानी साथ बनाना, सैर पे साथ जाना, उसके साथ खेलना, तो एक बॉन्डिंग आपको बचपन से ही अपने बच्चे के साथ बनानी पड़ेगी, फिर अडल्टहुड में वही बॉन्डिंग आसान होती चली जाती है।
1: अच्छा, बहुत एक सेंसिटिव इशू मैं अभी लाना चाह रही हूँ, जो हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों को, चाहे फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो, और उस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको डील करना थोड़ा सा टिकलिश होता है पेरेंट्स के लिए, तो कैसे उनको अलग से डील किया जाए, ये भी एक मुद्दा है समझने का।
0: हाँ, अगर आपका बच्चा फिजिकली स्पेशली एबल्ड है या मेंटली स्पेशली एबल्ड है, तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उसको सही डॉक्टर के पास दिखा के, अगर ये प्रॉब्लम है तो उसके एक्सेप्ट करें। बहुत से पेरेंट बहुत सा समय आदत डाल देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, या हुआ है तो क्यों हुआ है, या हमको श्राप हो गया है, या ये, तो उसको एक्सेप्ट करें कि ये है। कोई भी बच्चा हो या किसी में भी कोई भी फिजिकल एक स्पेशल ये है, तो कोई ना कोई उसका दूसरा बात ऐसा होता है कि वो उसमें चैम्पियन बन सकता है, तो उस बात को हम देखें, उसको मैं बच्चे

0: को भी ये बताया कि भाई तुम्हारा एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे लोकोमोटर प्रॉब्लम है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो दूसरी कोई बात हो सकती है, उसको हम निखारे बाहर और बच्चे को उसके अंदर एक्सेल करने के लिए उसकी मदद करें, उसका साथ दें। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स समझते हैं मेरे ही बच्चे को क्यों हुआ, तो पेरेंट्स के एसोसिएशन इंडिया में बहुत जगह है, आपके गांव में, आपके शहर में होंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन एक नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में परिवार के नाम से चलता है, उस एसोसिएशन से आप जुड़िए। उसमें ऐसे ही बच्चों के बहुत से पेरेंट्स एक साथ आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, गाइडेंस बताई जाती है, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा सरकार से ये बताया जाता है। तो जब आप देखते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, बहुत से लोग हैं, तो एक साथ मिलकर उस बच्चे को क्या उसके अंदर निखारा जा सकता है, उसको निखार के उसको चैंपियन बनाया जा सकता है।
1: जी, तो प्रयास किए जा सकते हैं। और आपने बताया कुछ जो ये साइट्स हैं, क्या हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे
0: ये
1: जोड़ा जा
0: साइट,
1: सकता
0: हाँ,
1: है?
0: परिवार करके आप डालोगे, NGO फॉर पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये साइट पे जाके आप जुड़ सकते हैं इसके साथ।
1: अच्छा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुद्दा होता है कि कम्युनिकेशन तो कई बार होता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन जो है उसमें अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जब एक ग्रोइंग बच्चा है घर में, एडोलेसेंट हो, तो कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं दोनों का व्यूज़ जानना चाहूँगी, अलका जी आपका भी और डॉक्टर अली आपका भी इस बारे में।
2: एडोलेसेंस में एक चीज़ जो हमें ऑब्वियसली दिखने लग पड़ती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो लड़कियों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग किस्म के चेंजेस होते हैं। इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन तो आ ही जाएगी, पर सबसे पहले तो ये जो हमारे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। तो हम जैसे समाज में लड़के और लड़कियां और इस बदलाव के बारे में बात से शुरू कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा होगा लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, उनको मैन पीरियड्स आने शुरू हो रहे हैं, इससे बातचीत आप शुरू कर सकते हैं। एंड देन इवेंचुअली आप सेक्स एजुकेशन क्या होगा, तुम्हें लगता होगा लड़कों की रुचि तुम्हारे में बढ़ रही है, या लड़कों के साथ भी बात की जाती है। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे बेटे के साथ ये सबसे पहले उनका जो पहला लंच हुआ था इकट्ठा, ऑफ कोर्स हैविंग बीन टुगेदर, बट एक मैन टू मैन लंच उनका इकट्ठा हुआ था, वही बात थी कि तुम्हें अब लग रहा होगा कि तुम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ आइडेंटिफाई करो, किसी के साथ ज़्यादा घूमना चाहते हो। ये इनके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और ये बातचीत जब हम करने लगेंगे एज पेरेंट्स, तो वो फिर एक बॉन्डिंग बनती है, वो एकदम से नहीं हो सकती। अगेन, बचपन से अगर आप अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करना शुरू करेंगे तो 10, 11, 12 साल की उम्र पे ये बातचीत बहुत आसानी से हो सकती है। पर हमने बचपन से ही कभी बात ही नहीं करी, कहानियां नहीं सुनाई, कहानियों से जुड़ते हुए क्यों क्यों के सवालों के जवाब नहीं दिए, सच जवाब, तब तक फिर आप बाद में एकदम से ये बात नहीं उठा सकते।
1: और जब पेरेंट्स से ओपन कम्युनिकेशन होगा तो फिर उन्हें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सोर्स कई बार गलत भी होते हैं, गलत डायरेक्शन में भी उनको भेज सकते हैं। आप क्या
0: तो सेक्स एजुकेशन के बदले अब हम लोग काम बात शुरू करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। इसमें 8 अलग अलग बिंदु है। सबसे पहले हम बात करें रिलेशनशिप्स की, हम बात करें वैल्यूज़ कल्चर, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, जेंडर को हम अंडरस्टैंड करें, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है, वायलेंस और कैसे स्टे सेफ कर सकते हैं इसकी बात करें, हेल्थ हेल्दी वेलबींग की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें कि लड़के में लड़की में क्या है, उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर और लास्ट में आता है सेक्स एजुकेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन सब चीज़ों की बातें अगर हम बच्चा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली अगर हम इन बातों पर करेंगे तो ये जो दिक्कतें आ रही है, डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन की बात करना इंडिया के कल्चर में बहुत डिफिकल्ट है। पेरेंट्स के लिए हमने आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी है, मतलब अभी भी टीचर ये बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं यंग बच्चों को, बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इसके माध्यम से हम शुरू करते हैं, क्यों क्यों वाला जो सवाल जवाब होता है, तो आप यू कैन रीच टू दैट पॉइंट व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चा आपस में बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 पॉइंट्स जो आपने बताए हैं ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है। और चल, अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो चलते चलते बस मैं चाहूँगी थोड़ा नटशेल में आप बताएं क्या आज का जो विषय है उस पर आप हमारे श्रोताओं को बोलना चाहेंगे चलने से पहले।
2: आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड का बनाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड शुरू होगा बात करने से, लिसन करने से, उन्हें अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट से उनको सपोर्ट करने में। तो बात करिए, सुनिए उनकी बात, समझिए उनकी बात, और फिर रिस्पेक्टफुली मिलकर सॉल्यूशन ढूंढिए। ज़रूर आपके लिए ये

0: जर्नी बहुत ही सिंपल और आसान रहेगी।
1: डॉक्टर अली,
2: सारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देखिए, मानसिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल किस तरह से बच्चा कर रहा है। और शुरू से अगर बच्चे से, जैसे मैडम ने कहा कि बॉन्डिंग अगर होती है, तो ये सब के पता करना बच्चा हमारा किस स्थिति से गुजर रहा है, और स्पेसिफिकली फिजिकल तो दिक्कत आता है, मेंटल दिक्कत नहीं आता, बच्चे से वार्तालाप करने से, कम्युनिकेशन करने से ये चीज़ों को हम लोग हल कर सकते हैं
1: जी। तो अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े, हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया। आप अगर हमें कुछ और लिखना चाहते हैं, आप हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब धन्यवाद दूंगी अपने आज के रेडियो डॉक्टर्स का। डॉक्टर सैयद हूबे अली हमारे साथ रहे, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ इंडिया में, और अलका मल्होत्रा जी, आप सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों आए इस विशेष अंक में, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर हमने ढेर सारी बातें की, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: और स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: तो भी इस तरह अरबिक, नेपाली, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज।
1: अच्छा क्या बात, थोड़ा जा हो जाए फिर कुछ पैरोडी जी साडे लई पेश कर दियो, क्योंकि ना अच्छा। बड़ी देर तो साडे सुनन वाले सोच रहे ने वी गल्ला मारी जांदे आ, करण वाला काम कर दे।
0: ठीक है फिर इदा कर दे, तुसी दोनों मैंने एक एक लैंग्वेज बोल जायो, एक एक दो दो लाइन बाद ही अपन इदा स्विच करांगे।
1: ठीक है,
2: कश्मीरी तो शुरू कर लेंगे।
0: ठीक है।

0: जी भोजपुरी भी गा लेंगे तुसी?
1: गा सकते हैं भोजपुरी तो बहुत सारे गीत ने, बट
0: जी
1: इत्थे मैनू दिल कर रहा कि मैं कोई कजरी या कुछ इदा होर सुना देवा।
2: जी
0: बिल्कुल
2: जी
0: बिल्कुल
1: चैती सुना दिनी हूँ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो FM बैंड 102.7 ते दोस्तों माँ प्यो जिंदगी दा पहला फलसफा जान पछाण कहने का मतलब जड़ा तो बिना दरखत कहते नहीं होंदा। ते जिंदगी एक किताब है दोस्तों। इस किताब दा जड़ा पहला अध्याय ना, पहला अक्षर है, पहली सिख्या है, वह सब माँ प्यो तो शुरू होंदी है दोस्तों। फलसफे की भाषा विच कहिए तां माँ प्यो साडा आदि कारण ने। अरसतू ने कहा सी कि हर चीज़ का एक कारण होंदा है, साडे होंद का कारण, साडी सोच का कारण, साडे सुभा का कारण माँ प्यो ने। वह सिर्फ ना शरीर नहीं होंदे, वह सानू इंसान बनाउंदे ने। जिवें मिट्टी तो बिना घड़ा नहीं बनता, उवें माँ प्यो तो बिना शख्सियत नहीं बनती। गल करदे दोस्तों कि होंद का फलसफा यानी कि असी कौन हाँ का जवाब की है। फलसफा हमेशा पुछता है कि मैं कौन हाँ। इस सवाल का सब तो पहला जवाब माँ ही दिंदी है जदों कहती है पुत तू मेरा है। उदाहरण वजो एक बच्चा शीशे च अपना मूँह वेखता है, वह पता नहीं वह कौन है। फिर माँ आके कहती है कि यह मेरा गुरु है। उसने एक बार वाक नाल बच्चे नूं पछाण मिल जाती है। प्यो अपने नाम दे नाल बच्चे का नाँ जोड़ के उसनूं समाज च जगह दिंदा है। यह अमरजीत का बेटा है। हाइडेगर कहता सी कि इंसान संसार च सुट्टिया गया है, माँ प्यो उहो ने जो सानू इस संसार च सुट्टे जाण तो बाद संभाल लैंदे ने।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, ते आपां फलसफे ते गल कर रहे सी बापिया दी, ते एक होर फलसफा है कि माफ़ी दा फलसफा। उस तो पहला साढ़े सरोते ने सानू एक मैसेज भेजा है, आर जे रवनीश जी, माँ दा जिहड़ा दूसरा नाम है ना, गॉड है। जे इस धरती ते माँ ना हुंदी तां दुनिया ना हुंदी। माँ है तां दुनिया है। प्यार दी परिभाषा बच्चा माँ कोलों ही सीखदा है। क्या बात है जी। माफ़ी दा फलसफा दी गल करदे हां कि कुट्टन वाला हथ सहलाउण वाला भी उही। कहन दा मतलब दोस्तों, माँ प्यो सानू कुटदे भी ने ते साढ़े हंजू भी पूंजते ने। दुनिया च केड़ा रिश्ता है जिससे गुस्सा ते प्यार इक्को दिल च निकलते ने। स्पिनोज़ा कहिंदे सी कि सच्चा प्यार वो है जो दूजे नूं ओ बनण च मद करदे जो वह बन सकता है। माँ प्यो सानू कुट के बुरा बच्चा नहीं बनाउंदे, वह सानू चंगा इंसान बनाउण दी कोशिश करदे ने। उदाहरण देने हैं कि बेटा जेकर पेपर च फेल हो जाता है, माँ पहला डांटती है, कुछ नहीं पढ़ता तू। 5 मिनट बाद उही माँ उसके सिर ते हाथ फेर के कहती है, कोई गल नहीं पुत, अगली बार हो जाएगा, चाह पिएगा। ए है बिना शर्त माफ़ी दोस्तों। उस तो बाद आता है मौत ते अमृता दा फलसफा, यानी कि शरीर मरदा है, रूह रहिंदी है। माँ प्यो सानू सिखाउंदे ने कि मौत अंत नहीं। जदों दादा दादी चले जांदे ने, माँ प्यो कहिंदे ने ओह तारा बन गए ने, रोज़ रात नू तैनू वेखणगे। उह सानू सिखाउंदे ने कि चंगे काम करो, नाम कमाओ, तां जो लोग तुहाडे मरण तो बाद भी याद रखण। यही अमृता दा फलसफा है। उदाहरण वजों दोस्तों, एक प्यो अपने बेटे नू कहिंदा है, पुत मैं मर भी गया तो लोग तेनों वेख के कहणगे, ये तो उस सच्चे इंसान का बेटा है

वेल दोस्तों, एसी एज आई लव यू जिंदगी। अखीर में यही कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी पूरी नहीं होंगी पर सोनी जरूर बनाई जा सकती है। आओ इस नु मिलके कहिए लव यू जिंदगी, चाह दी चुस्की, प्यारियां गल्लां ते जिंदगी नाल प्यार। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਗਾਇਜ਼, ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲਾਨ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਗਾਇਜ਼, ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ।

जी हाँ दोस्तों, अज असीं गल कर रहे हैं एक ऐसी कलाकार जिन्हां ने बहुत सारा एंटरटेन किया एंड बहुत घट लोग जानते होंगे कि नरगिस दी जिहड़ी फैमिली है, नरगिस जिहड़े माता जी सन, वो आप ही एक बहुत वड्डे अपने समय दी मशहूर गायिका ते फिल्म निर्माता सन जिन्हां दा नाम सी जदन बाई। जी हाँ, यानी कि असीं कह सकते हैं कि उन्हां दा घर दा माहौल ही एक कला दे नाल सी। एंड छोटे होंदे ही, बहुत छोटे होंदे ही, नरगिस ने पहली बार कैमरा जिहड़ा है फेस कर लिया सीगा ते एक किरदार जिहड़ा निभाया सी। जी हाँ, मात्र 6 साल दी उम्र दे विच फिल्म तलाशे हक दे विच वो पहली बार नज़र आए सी ते लोगों ने शायद उस टाइम उन्हां नूं वेख्या भी होएगा, पर किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक छोटा जिहा जिहड़ा नन्ना जिहा किरदार एक कुड़ी जिहड़ी है प्ले कर रही है, अगे जा के भारतीय सिनेमे का सब तो व्डे जड़े महान अभिनेत्रियां हैं उन्होंने एक।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। शाम दे 8:04 हो चुके ने एंड आई नो कि प्रोग्राम जड़ा है वो शुरू हो चुका, जिसका नाम है जी मसाला मिक्स। बहुत सारी गल्लां करांगे एंड मैं भी दस देवां कि भाई आई नो कि भाई अज 1 जून है एंड पहले दिन ही तुहानू सोमवार मिल जाए। मतलब है ना, लोग कहें कि भाई मैं तो ना उदों काम करांगा या करांगी जदों ना हफ्ते का पहला दिन मंडे होवे, यानी कि महीने का पहला दिन जड़ा है मंडे होवे। देख लो जी, जून भी है तो मंडे भी है तो होर कि मोटिवेशन लभ रहे हो। सो बहुत सारी गल्लां करांगे जो कि तुहानू मोटीवेट भी करनगियां, तुहानू जानकारी भी देनगियां, क्योंकि प्रोग्राम ही कुछ ऐसा है मसाला मिक्स, यानी कि बहुत सारिया गल्लां दा मिक्स। पर फिलहाल मैं एक बड़ा खूबसूरत गीत लैके आया तुहाडे सामने, गीत तों बाद करांगे गल्लां दा सिलसिला शुरू।

पागल सा खूंखार आदमी क्यों मेरे मुंह लगते हैं। मेरी आंखें हैं निशानों पे निशाने, कभी न चूके हैं। ये खुद नहीं खरीदी, ये पुश्तैनी बंदूकें हैं। मैं तेरी तरह हर बात ना अपने बॉस को एस्केलेट करूं, मेरी रुकती नहीं बंदूक मार गोलियां छाती में छेद करूं।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब वंस अगेन एंड लेट वाली गुड इवनिंग वंस अगेन। जिंदगी जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, रात के 9:04 हो चुके हैं। एफ एम रेनबो से प्रोग्राम शुरू हो चुका जिसका नाम है जी दिल चाहता है। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का दिल बहुत चाहता है कि बई हिंदी ते पंजाबी गीत जिहड़े ने ओह अक्सर सानू फरमाइश करदे ने, तुसीं भी कर सकदे हो। साडा वट्सएप ते नंबर है 9855101027 9855101027 ते बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी मैनू जिहड़े बहुत सारे मैसेजेस जिहड़े ने ओह भेज चुके ने। चलो जी करदे हां शुरू अज दा ए सिलसिला। सब तो पहला मैसेज आया सानू जी नवीं दिल्ली तो मैसेज आया सानू जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म नीलकम।

जी हीरा ही मिला हुआ है आपको दोस्तों। जी हाँ, वो हीरा है आकाशवाणी जलंधर, जहाँ पर आप अपनी हीरे की चमक को उठाते हैं, या कह लो कि उसका लुत्फ उठाते हैं प्यारे प्यारे नगमों के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहित रूबल। समा हो चुका है रात दे 9:30। लो जी हूँ आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज आया जी, प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारक नू प्यार परी सत श्री अकाल। फिल्म चंद परदेसी गीत नारुस हीरे हीरे मेरी पिंड नथाणा पंजाब तो हरजिंदर छिंदा जसविंदर जसवीर जस्सी सीता और गीता खुश रहो खुशियां वंडो। फिल्म कड़ी आखी इन्होंने चंद परदेसी चक। ठीक है जी, चंद परदेसी गाने का बोल लिखे इन्होंने नारुस हीरे मेरीए। लो जी मोहम्मद रफी साहब का गीत लभ गया, थैंक यू सो मच फरमाइश भेजन दे लई। अगे मैसेज आया करणवीर हाउस पुचो कैंचियां बठिंडा पंजाब तो नमस्कार जी। प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन ते अभिजोत किसी भी गीत विच कहिंदे ने सानू शामिल किया जाए। अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे जी, कार्यक्रम दिल चाहता है आपका हर पल खुशियों से भरा हो। और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गावे मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक। अगर गीत नहीं चला सकते तो नाम शामिल आ रहे, नाम हो गया शामिल आपका। अगला मैसेज व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेशकर्ता को प्यार भरा नमस्कार। स्वर कोकिला सुमन कल्याणपुर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। फिल्म राजकुमार 1964 आवाज़ सुमन कल्याणपुर है मोहम्मद रफ़ी। गीत के बोल तुमने पुकार और हम चले आए। ये गीत मैं ऑलरेडी प्ले कर चुका था पिछले प्रोग्राम में, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा ज़रूर प्ले करेंगे अगले गीत में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन गायक सुमन कल्याणपुर जी को शत शत परिणाम। आज वो दुनिया से रुखसत हो गई, उन्हीं का गीत सुनवा दीजिए गीत नाना करते प्यार। एक गीत ज़रूर हम प्ले करेंगे, हमने 7 से 8 बजे के प्रोग्राम में उनको आधा घंटा उनको आज श्रद्धांजलि दी है। आई होप आप सभी ने वह प्रोग्राम भी सुना हो। और ये फरमाइश हमें भेजी है सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जी ने, थैंक यू सो मच। अगले मैसेज पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा मूवी जब जब फूल खिले ट्रैक ये समा। आइए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं चंद परदेसी मूवी का, उसके बाद सुमन कल्याणपुर जी का गाना जरूर प्ले करेंगे प्रोग्राम दिल चाहता है मैं।

अगला मैसेज दिल पर चाचा है। सुप्रिय नमस्कार, आप कैसे हैं? सर्वप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर जी को सादर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित, सत सत नमन। फिल्म ब्रह्मचारी आजकल तेरे मेरे के चर्चे गाना सुन चुके हैं, थैंक यू सो मच। सभी की तरफ से मुझे पता है कि वो सभी को जो एक धक्का लगा, और यकीनन वो प्यार मोहब्बत सभी के दिलों से है और सभी उनको ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। सो तहे दिल से शुक्रिया। ये मैसेज भेजा है हमें महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी ने। माय रेडियो माय लाइफ, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया हमारे पास। क्या बात है, सभी लोगों ने एक ही गीत की फरमाइश करी है, मतलब कितना प्यार करते हैं सभी सुमन जी से। गुड इवनिंग एक्सपेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, आजकल तेरे मेरे पैर के चर्चे, फिल्म ब्रह्मचारी, सिंगर सुमन कल्याणपुरी और ईयर 1968। थैंक्स, आप हमें किसी गीत में शामिल कर दीजिए, ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज फिर से, नमस्कार जी, और सेम फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित हूचा। अगे बढ़ते हैं, अगला मैसेज आया जी। दिल चाहता है पिंड मूलियां वाली जिला फाजिल का प्यार पिंड, नमस्कार विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जनत काठपाल, गुरलीन काठपाल, फिल्म नचती जवानी का कोई भी पंजाबी गीत, ठीक है जी, जरूर कोशिश करेंगे। अगला मैसेज पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक, धन्यवाद, ठीक है जी। सो हुण आपां एक गीत सुन लैणा, गीत तो बाद जिहड़े होर मैसेज ने उन्हां नूं पढ़ लैणे आ। तुसीं वी मैसेज भेज सकदे हो 9855 10 10 27 ਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ।

में आनंद आ जाता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला मैसेज है, सप्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, गीत श्रवण का महीना पूर्ण कर ईश्वर, फिल्म मिलन आवाज लता मंगेशकर, मुकेश और नायब हनुमान को राजस्थान से, वेद मिठा और अलका मिठा जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला मैसेज मदर इंडिया से, गीत ओ गाड़ी वाले गाड़ी हॉंक रे, धीरे गाड़ी हो करे। ओके जी, भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान और पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करे, धन्यवाद। माई रिस्पेक्टेड मोहित रुबल जी, सत श्री अकाल, हिर जसवीर सिंह दौरा आदमपुर, इट्स श्रद्धांजलि टू समन सुमन कल्याणपुर जी, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, दिस सॉन्ग इज तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सिंगर सुमन कल्याणपुरी जी एंड रफी साहब, प्लीज प्ले द सॉन्ग। आई हैव ऑलरेडी प्लेड मैनी सॉन्ग, आई विल प्ले वन मोर सॉन्ग इन ए वाइल। आगे कोई मैसेज आया है, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा, राहुल शर्मा, फिल्म राजपूत और गाना अकेला

चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान और पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें, धन्यवाद। माई रिस्पेक्टेड मोहित रुबल जी, सत श्री अकाल। हेर जसवीर सिंह दौरा आदमपुर, इट्स श्रद्धांजलि, इट्स दी श्रद्धांजलि टू समन सुमन कल्याणपुर जी, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, दिस सॉन्ग इज तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सिंगर सुमन कल्याणपुरी जी एंड रफी साहब, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। आई हैव ऑलरेडी प्लेड मैनी सॉन्ग, आई विल प्ले वन मोर सॉन्ग इन ए वाइल। आगे कोई मैसेज आया है, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा, राहुल शर्मा, फिल्म राजपूत और गाना अकेला गया था मैं। अगला मैसेज आया जी, मेरा नाम अनमोल, मैं डलहौजी से गाना सुनना चाहता हूँ। बल्ली ने पंजाब दी ये शेर बच्ची है, आशा सिंह मस्ताना। तो ठीक है जी, अगला मैसेज आया जी, दिल चाहता है गांव फ्रांसिस जिला हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। ठीक है जी, कोई भी की सुनना चाहते हैं ये दोस्त। आगे मैसेज आया, तुमसे मिलना मूवी तेरे नाम, हैप्पी जिंदर, एकम, अभिजोत, खुशमन, ਐਸ਼ਮੀਨ, ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਬੇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇ

तुम लौट आए। जी हाँ दोस्तों, हम वापस लौट आ चुके हैं और प्रोग्राम तो एंजॉय कर रहे हो, दिल चाहता है प्रोग्राम। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मैसेज आया है। किनका आया है रे? गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और ये हमें गाना सुना चाहते हैं, बोल दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। अगले में से सुखबीर सिंह, कमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर, एनी सॉन्ग। ठीक है जी, थैंक यू। अगले मैसेज, फिल्म धरती कहे पकार का सॉन्ग, हम तुम चोरी से, के हम तुम चोरी से। भेजने वाले हैं संदीप मकर, ज्योति मकर, मनस मकर, भरत मकर, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक, राया जलंधर तौ। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज, दिल चाहता है, चक 14 PSB, जिला श्री गंगानगर से, कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप कौर, जसवंत सिंह, हरदीप सिंह, मनराज वीर की ओर से नमस्कार जी, कोई भी पंजाबी गीत में शामिल किया जाए। अगला मैसेज, आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार ढेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, किसी भी

धुरंधर तालीवाल से लिख रहे हैं, प्लीज प्ले सॉन्ग या अली रहम वाली। ओके ठीक है जी, ये गाना जरूर बजेगा, डोंट वरी। अगला मैसेज है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नवी दिल्ली तो। हेलो कृष्णन पार्क दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, और लिखा एक फूल दो माली का एक मोहम्मद रफी आशा भोंसले, ये पर्दा हटा दो। अगला बस, गुड इवनिंग सर जी, पुराना पंगाला मुकेरिया हुशियारपुर तो, वरियाम अमित कुमार दोती काशनी फिल्म दे रास्ते, फिल्म दो रास्ते था कोई भी गीत। ठीक है जी, अगला मैसेज गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ पंजाब तो, बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। ठीक है जी, लो जी जी फरमाइश आई है, मूवी गैंगस्टर मूवी का गाना है जो कि जुबिन गर्ग ने गाया होया। आओ इंजॉय करते हैं इस गीत नूं एफएम रेनबो दे प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच।

जी थैंक यू सो मच जी इस गायन इस गीत की फरमाइश करने के लिए. ओह सॉरी मैंने खुद चलाया है. ओके थैंक यू सो मच वंस अगेन. स्टिल थैंक यू सो मच. टाइम इज 9:46:26 एंड यू आर लिसनिंग फ्रॉम रेनबो दैट इज 102.7 एफएम रेनबो. माय नेम इज मोहित रेनबो. व्हाट इज योर नेम, वेयर यू फ्रॉम, व्हाट यू वांट टू लिसन, जस्ट टेक्स्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9855101027. सो हियर इट इज आवर नेक्स्ट मैसेज. अगला मैसेज है सानू जी लिखे है होली चौंक. होली चौंक होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से. आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है. सभी गीत आपके एक से एक हैं. बहुत अच्छे गाने सुनवा रहे हैं आप. किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए. होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल. जनाब एक चीज ना आप हमारी सुनिए. आपने एक ही मैसेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपने मैसेज किया है. आपका एक मैसेज भी हमें उतनी बार ही मिलेगा जितनी 15 बार मिलेगा. सो कृपया एक मैसेज ही भेजें. धन्यवाद. अगला मैसेज, सर जी नमस्कार. एनी फिल्म सॉन्ग मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा कृपया शामिल करें. थैंक यू जी थैंक यू. अगला मैसेज, कार्यक्रम थोड़ी फरमाइश. अरे नहीं, प्रोग्राम का नाम हैगा जी दिल चाहता है. सुखिंदर सिंह की आवाज़ विच केड़ा भी पंजाबी गीत सुनवा दो जी. ठीक है जी. सुखिंदर सिंह दा केड़ा गाना सुनावा जेड़ा मैं रीसेंटली गुनगुना रहा सीगा. बड़ा सोहना गाना सीगा सुखिंदर सिंह दा. हाँ लाई भी ना गई. फिल्म का नाम हैगा शायद चुपके चुपके. वह लगा दें. ठीक है, कोई फिल्म का भी है तो सुखिंदर सिंह जी का भी है ना जी. तो हूँ लभना थोड़ा जा चुपके चुपके से ना शायद वही सी चुपके चुपके शाहरुख खान की. नहीं लभ्या. मैं कोशिश करदा दोबारा लभन की. उन्नी देर तक आप अगला कोई होर मैसेज पढ़ लें. ओके जी, अगला मैसेज है चौटाला हरियाणा तो दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा गाने के बोल. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम का करें. अगला मैसेज, कार्यक्रम दिल चाहता है पेशकर्ता को प्यार भरा नमस्कार. कैसे हो जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. फिल्म पत्थर दिल, आवाज़ गुदासमान, गीत के बोल सदियाँ बीती कोई ना जाना. अच्छा जी, पत्थर दिल दे विच गरह गीत है ते जरूर चलेगा जी. पत्थर दिल दे विच असी पहुँच गए हैं. पत्थर दे रिकॉर्ड, पत्थर दे ये पत्थर. ओके यह थोड़ा जा कम हो जाता हैवी. नहीं मिला जी, काला पत्थर मिल गया सानू पर आवला नहीं मिलया. सो कोशिश फिर करांगा मैं दोबारा लभन दी गीत पर नहीं फेल. ओके जी, गाने की फरमाइश सानू भेजिए. रघुनाथपुरा सिला सिंह गंगानगर राजस्थान सो लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी. ठीक है जी. अगला मैसेज, फिल्म जब जब फूल गिरे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में नाना करते प्यार. ठीक है जी. श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिया नयाब और लड्डू. ठीक है जी. और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है पिंड हीरावाली ज़िला फाजिलका के पक्के श्रोता सुभाष गुदारा, विमला गुदारा, इंदू, पार्वती, हिमांशु गुदारा.

न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से इस वेले रात दे 10:01 हो चुके ने, तुसी सुन रहे एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शामे गजल। इस प्रोग्राम नू लैके हाजिर हो चुका है तुहाडा दोस्त मोहित रूबल। ते आओ प्रोग्राम दे विच सब तो पहली गजल जिहड़ी है असी उसका आनंद माणदे हां, जो कि गाई है गुलाम अली साहब ने।

न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। कि हमें तो रास ना आई किसी की महफिल भी, हमें तो रास ना आई किसी की महफिल भी, कोई खुदा कोई हमसाया एक खुदा निकला। हमारे पास से गुजरी थी एक परछाई, हमारे पास से गुजरी थी एक परछाई, पुकारा हमने तो सदियों का फासला निकला। क्या बात, बड़ी ही खूबसूरत गजल जो है खलील उर रहमान आजमी साहब दी, जो कि मैं पढ़ने की कोशिश की थी। सो एंजॉय करें प्रोग्राम शामी गजल।

जी दोस्तों, एंजॉय करें प्रोग्राम शामी गज़ल रात दा। समा हो चुके 10:10। सो एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है खलील उर रहमान आज़मी साहब दी कि बने बनाए से रस्तों का सिलसिला निकला, बने बनाए से रस्तों का सिलसिला निकला, नया सफ़र भी बहुत ही गुरेज पा निकला।

मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, कुछ बता दे जिंदगी ए जिंदगी। मैं कहाँ हूँ, कुछ बता दे जिंदगी ए जिंदगी, फिर सदा अपनी सुना दे जिंदगी ए जिंदगी। कि सो गए एक एक करके खाना है दिल के चिराग, सो गए एक एक करके खाना है दिल के चिराग, इन चिरागों को जगा दे जिंदगी ए जिंदगी। वो बिसाते शेरो नगमा रत जगे वो चह चहे, वो बिसाते शेरो नगमा रत जगे वो चह चहे, फिर वही महफिल सजा दे जिंदगी ए जिंदगी। कि जिसके हर कतरे से रग रग में मचलता था लहू, जिसके हर कतरे से रग रग में मचलता था लहू, फिर वही एक शय पिला दे जिंदगी ए जिंदगी। अब तो याद आता नहीं कैसा था अपना रंग रूप, अब तो याद आता नहीं कैसा था अपना रंग रूप, फिर मेरी सूरत दिखा दे जिंदगी ए जिंदगी। कि एक मुद्दत हो गई है रूठा हूं अपने आप से, एक मुद्दत हो गई है रूठा हूं अपने आप से, फिर मुझे मुझसे मिला दे जिंदगी ए जिंदगी। Thank you.

सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खाता, मेरी वफा, तेरी खाता कुछ भी नहीं। कि जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। दो चार दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा। दो चार दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा। जब आग पर कागज रखा, बाकी बचा कुछ भी नहीं। एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ। एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ। खामोश यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं।

प्यारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है अपने दोस्त मोहित रूपल के नाल।

प्यारे दोस्त, इंजॉय कर रसी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से अपने दोस्त मोहित रुबल के नाल। दोस्तों, इस वक्त समा हो चुका है 10:55 ते 45 सैकेंड्स। आओ हुण इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।